अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
2: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
3: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना. और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
4: From the studios of Inspire FM, the

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोनसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: कोर्ट पे जरा सी बात होगी, वहां गर्मी सर्दी, एक दूसरे का गिरेबान पकड़े, पार्लियामेंट के अंदर जरा सी बात होगी तो एक दूसरे को चेहरे मारी, एक दूसरे को पीटा, गाली गलौज किया, सड़कों के ऊपर, सेनेट के ऊपर, अंदर पार्लियामेंट हाउसेस के अंदर, दीगर मकामात पर, जबकि मुअज़्ज़ब कौमों के अंदर ऐसे रवैये में कम नजर आते हैं। अब दलील से बात करो, दलील से रद्द करो, अपना मौक़िफ़ बयान करो, लेकिन इस तरह की मुखालफत और इस तरह के झगड़े, ये हमारा एक कौमी निशान बनता जा रहा है। कहीं पर भी जाओ वहाँ पर झगड़े ही झगड़े, हर बंदा दूसरे से झगड़ रहा है। किसी घर में चले जाओ तो मियाँ बीवी के झगड़े, बाजार में चले जाओ गाहक के और दुकानदार के झगड़े, पार्लियामेंट हाउस में चले जाओ तो अपोजिशन के और वहाँ हिजब इकतदार के झगड़े। यानी ये जो झगड़े वाला रवैया है, इसके बारे में भी इसलाह की ज़रूरत है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया क्या हैं, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावियां हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्ना अबग़ज़र रिजाल इल्लल्लाहि अलद्दुल खसीम। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा मबगूज तरीन आदमी वो होगा जो तुरश रू है और झगड़ालू है, जिसके माथे पे हर वक्त बल रहता है और वह हर वक्त झगड़ता रहता है लोगों से, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह के गजब का शिकार होगा। आप अंदाजा लगाएं कि जो आदमी तुरश रू है, झगड़ालू है, हर वक्त झगड़ता रहता है, अल्लाह भी उसको पसंद नहीं करता, वह अल्लाह के महबूब बंदों में भी शामिल नहीं होता। आप देखें ना, मुस्कराहट चेहरे पे हो, अच्छी तरह लोगों को मिलें, माशरे के अंदर अमन आश्ती आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पर एक आदमी आपको जानता नहीं, कोई छोटी सी शॉप है, दुकान है, वो बैठा होता है वहाँ अपना काम कर रहा है, आप वहाँ से गुजरें, कुछ ना लें, कुछ शॉपिंग ना करें, उसके पास से मुस्कराते हुए चेहरे से उसको कह दें अस्सलाम वालेकुम, वो आगे से कहेगा वालेकुम सलाम, आप गुजर जाएं। आप आगे चल जाते जाएंगे, उसके दिल के अंदर आप मोहब्बत का ही एक बीज बो के चले गए, वो बाद में सोचता रहेगा, यार ये कितना अच्छा आदमी है। और अगर चंद दिन, एक हफ्ते तक आप ऐसा करेंगे, आपने उससे कोई शॉपिंग नहीं की, आपने उसको कुछ दिया नहीं, उसने आपको कुछ नहीं दिया, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, आप जानते भी नहीं उसको, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, मैं ऐसे मिलूं कि इतना अच्छा बंदा है, इतना प्यारा बंदा है, मुझे ये मुस्करा के सलाम करके रोज गुजर के जाता है। क्या होगा कि उसके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके पास से गुजरें, माथे पे बल हो, चेहरे पे हो, उसको पंजाबी में कहते हैं क्रूट हो, और मुंह बटा हुआ हो, और आप गुस्से में उसके देख के खौफनाक आंखों के साथ आगे गुजर जाएं, वो कहेगा ये क्या बदतमीज़ आदमी है। दो दिन चार दिन करेंगे तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, यार ये बंदा यहाँ गुजरे ही ना, या मेरी नज़र ही इस पर ना पड़े, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये रवैये जो हैं, यही बड़ी चेंज और बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। यानी हम यहाँ पर होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं या वैसे रास्ते में जा रहे होते हैं, अगर किसी को ज़रा भी गलती आ जाए वो सॉरी कर लेता है, अगर हम किसी की थोड़ी सी हेल्प करें वो थैंक यू कर लेता है, लेकिन हम अपने माशरों में देखते हैं ऐसा नहीं मिलता, कोई बंदा थैंक यू करना या सॉरी करना अपनी तौहीन समझता है, उल्टा वो चाहता है कि गलती भी करूँ और इसका गिरबान भी पकड़ूँ, झगड़ूँ इसके साथ। अगर वो कोई बंदा बेचारा कमज़ोर है तो फिर तो उसकी आई सख्ती, फिर तो पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या होना है, लेकिन अगर कोई आगे से बंदा ठीक होगा तो हो सकता है कि उस वक्त मजबूर होकर कोई हथियार फेंकने पड़ जाए। तो बार क्या मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि माशरे के अंदर बात बात पे झगड़े करना, वो डोमेस्टिक हों, वो सोशल हों, या किसी भी हवाले से हों, इस्लाम के अंदर उनको कोई वक़्त नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह के यहाँ झगड़ालू लोग और तो शुरू लोग जो होते हैं वो मबगूज़ होते हैं, مبغوض ترین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام یہ پھیل جاتے, یعنی چلے جاتے. یعنی ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ کی حسن خلق کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کی ان سے محبت, ویل وشنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قریب کرتی ہیں ان کو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرِ مغاں ہیں مرد خلیق. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جہاں پر کڑوے پانی کا چشمہ ہو کون آئے گا وہاں پر پانی لینے کے لیے. یہ بات ہے. تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے, اس سے بچنا چاہیے. جب اللہ کے نزدیک وہ مبغوض شخص ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کاموں سے جو اللہ کی نظر میں ہمیں مبغوض بنا لے. پھر اس کے بعد باہمی عزت و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, میوچل رسپیکٹ. ہر بندہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے معاشرہ پرسکون رہے گا. اگر نہیں کریں گے اور یہی سوچیں گے بس سارے میری عزت کریں, میں بڑی چیز ہوں سب میری عزت کریں, مجھے نہ کسی کرنی پڑے وہ میری توہین ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی پڑے گی. اور جب باہمی عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر پھول کھلیں گے کانٹے نہیں. ادروائز وہ معاشرے جو میوچل رسپیکٹ سے خالی ہوتے ہیں وہ جنت نذیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں, نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ, فرمایا کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی کا کھونچا گاڑنے سے نہ روکے. یعنی جب پڑوسی ہیں دیوار درمیان میں ہے, وہ کوئی اس میں لکڑی کی کوئی چیز ٹھونکے اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی میری دیوار ہے. یعنی باہمی احترام کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو عزت دو کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اجازت دے دو کہ وہ اپنا کھونچا وہاں ٹھونک لے, منع نہ کرو, پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہی سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے جس میں اجتماعی معاشرے کی اصلاح کے لیے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور ضامن ہیں اصلاح معاشرہ کی اور معاشرے کو پرسکون بنانے کی. آپ نے فرمایا, ایاکم والجلوس علی الطرقات, پھر آپ نے فرمایا, فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهی عن المنکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو, رستے میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان مجالس میں بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کرتے ہیں اس لیے ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم رستے پر بیٹھتے ہو किसी जरूरी काम के लिए, तो फिर उन रस्तों का हक भी अदा किया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्तों का हक क्या होता है? आपने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, बड़ी ही काम की ये बातें, अगर एक पर भी अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को नीचा रखना, वहां इज्जत मां बेटियां भी गुजरती हैं, बहनें भी गुजरती हैं, इसलिए अपनी नजरों को नीचा रखो, क्योंकि दैट्स पब्लिक प्लेस। जब पब्लिक प्लेस में तुम बैठे हो तो वहां अपनी नजरें झुका के रखो। कई दफा जाना पड़े तो टाउन सेंटर में हमारे कई बुजुर्ग, कई लोग सुबह सुबह जाके वहां बेंचों पे बैठ जाते हैं, वो भी एक रास्ते वाली बात है, या कहीं और बैठ जाते हैं जहाँ लोगों की गुजरगाहें हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वहाँ बैठ भी गए हैं कोई गपशप लगाने के लिए, कोई कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, तो कोई बात नहीं, बैठ जाएं, वो बेंच होते ही बैठने के लिए हैं, लेकिन पहले नंबर पर नज़रों को नीचा रखें। अगर किसी को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ दूर करें। अगर कोई सलाम देता है तो सलाम का जवाब दें। वहाँ पर बैठ कर लोगों को नेकी का हुक्म दें, नेकी की तलकीन करें और बुराई से लोगों को रोकें। यानी ये हक है रास्ते में बैठने का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फलाह इंसानियत के लिए जो इज्तमाई रवैये हैं, इस हवाले से इरशाद फरमाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रवायत की हदीस है, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نحبة يرفع الناس إليها في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن। حضور علیہ السلام نے فرمایا, کوئی زانی जब जना करता है तो मोमिन नहीं होता, कोई शराबी जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता, कोई चोर जब चोरी करता है मोमिन नहीं होता। यानी ये मुआशरे के अंदर ऐसे नासूर हैं जो मुआशरे का अमन खराब करते हैं। हर आदमी जो कॉमन सेंस से भी इन बातों को सोच सकता है कि एक आदमी बदकारी का इर्तिकाब करता है, बहुत बड़ा फितना, बहुत बड़ा फसाद माशरे के अंदर बपा होता है। शराब, इससे कई खराबियां पैदा होती हैं और हराम करार दिया गया कुरान पाक में। चोरी चिकारी डाके मारना, इससे भी माशरा बर्बादी की तरफ जाता है। अगर देखा जाए तो ये वो खराबियां क्या मुसलमान माशरों में नहीं? यानी अगर हम अपने माशरे में अफराद अपनी अपनी सलाह कर लें, सोच लें कि हमने किस डगर पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है और आखिरत का कैसा अंजाम हमें चाहिए, तो हमारी इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर भी एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन हमें अपने हाल की खबर कम होती है और दूसरों का हर वक्त हम ख्याल रखते हैं कि इसको ये हो गया, वो ये खा गया, वो ये पी गया, वो ये कमा गया, अपनी फिक्र नहीं करते कि हमारे रवैये क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। और हर बंदा अगर दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने की बजाय अपने किरदार का एक मुराकबा करे, एक तजिया करे, एक एनालिसिस करे और उस मेडिटेशन के बाद वो सीधे रास्ते पर चलने का तहिया कर ले, अपनी कमज़ोरियों को वाश आउट कर दे और वहाँ पर नेकियों को जगह दे दे, अच्छाइयों को जगह दे दे, तो माशरा यकीनन पुरसकून बन जाएगा। वो अकबर बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, नतिगाल के जब हमें अपनी खबर रहे, देखते लोगों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो जहान में कोई बुरा न रहा। कि जब तक अपनी बुराइयों पर नजर नहीं पड़ी, हमें हर एक बुरा नजर आता था। और कभी बतौफीक अल्लाह ताला हमने जरा गर्दन झुका के अपने गिरेबान में झांकी लिया, अपनी खामियों, अपनी कोताहियों, अपनी गफलतों को हमने पहचान लिया और उनका एहसास कर लिया, तो फिर क्या हुआ, दूसरों की बुराइयां नजर ही नहीं आती, अपनी बुराइयों के अंधेरे के पीछे छुप गई हैं। अब क्या है कि خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں, اپنے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو چند ایک معروضات عرض کی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ارشادات فرما دی, اور جو چیزیں آرام کی گئیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی, آرام ہونے کے پیچھے بھی کئی ایک حکمتیں کار فرمایا, کہ یہ ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور دوسری طرف کیا ایک معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں. پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں, اور مختصر یہ کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ریورٹڈ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے, اور مسلمان بن کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو, اسوہ کو, ارشادات و اقوال کو اپنانا ہوگا, پھر ہی ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ تعالیٰ.
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है, आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर FM 105.1।

बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।